ये खंजर क्या है, बस देख लो तेवर क्या है। पैरों से मसल दून करती, 9 लाख का लश्कर क्या है, 9 लाख का लश्कर क्या है।

0: क्या हुआ? इन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। ये लोग कहीं नहीं जाने वाले।
1: खत्म कर दो ये सब। ये कोई आराम की जगह है?
2: जनाब मेरी क्या गलती है, सब यहीं रुकने के लिए कह रहे हैं।
1: जितना जल्दी हो सके सब लोग निकलो यहाँ से।
2: दुल्हन लेकर जा रहे हैं, कोई बाजार थोड़ा ही लगाया है।
3: आवाज तक नहीं निकली। अपनी बीवी का नहीं तो चाचा की बेटी का तो ख्याल कर सकते थे।
4: कोई रास्ता नहीं है, सब जाने का इंतजार कर रहे हैं।
1: ये रुकने के लिए महफूज जगह नहीं है, यहाँ रात बसर करना जरा भी मुनासिब नहीं।
4: हाँ बस जा ही रहे हैं हम।
3: अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो अभी इसी वक्त सबको लेकर कूफे की तरफ चली जाती, फिर देखती कि तुम क्या करते।
4: अब छोड़ो ना ये सब, चलते हैं।
3: या वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रुक के अपने बाबा के कारवां का इंतजार करते हैं।
4: नाइला गैरों के सामने ज्यादा मत बोलो।
3: तुमसे ज्यादा गैर और कोई नहीं है यहाँ पर।
5: चलो सब लोग अपना सामान समेटो, निकलना है यहाँ से। चलो जल्दी
1: सब लोग इस तरफ चलो।

0: ओहद जरा बताइए, मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं मैंने, कैसी लग रही हूँ?
1: अल्लाहु खैरुल हाफिजीन वहुवा अरहमुर राहिमीन चश्मे बतूर। कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, तुम तो खुद दुल्हन लगती हो। शामी औरतें भी ताज्जुब करेंगी कि आखिर दुल्हन कौन है।
0: अगर मुझे कारवा के साथ जाने की इजाजत दे देते तो क्या हो जाता?
1: सब्र करो, चलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है, तुम उसे शौहर के घर छोड़कर कैसे आती?
0: पहले उसका ससुराल कितना करीब था और अब वो हमसे कितनी दूर चली गई है। कहाँ कुफा और कहाँ शाम। अच्छा, यजीद से ही निकाह पढ़वाना जरूरी था क्या हमारी बेटी का?
1: ये कोई मामूली बात है कि मेरी बेटी का निकाह अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने पढ़ा है?
0: अगर वाकई यजीद को अमीर मानते हैं तो कम से कम एक मर्तबा तो उसकी दावत कबूल करके खिलाफत के जश्न में शरीक हो जाते।
1: आजकल यजीद का नाम लेना मुसीबत है। तुम सियासत को मर्दों के लिए छोड़ दो और अपने काम से काम रखो।
0: जी बिल्कुल।

0: चरवाहे कहेंगे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं है? जब सब वहां रुके थे तुम क्या कर रहे थे वहां?
1: हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है।
0: हद करते हो, इल्जाम लगाना कोई तुमसे सीखे, और ये तो तुम्हारे कबीले की आदत है ना, शर्म से डूब मरने के बजाय अकड़ के खड़े।
1: आखिर मैं क्यों शर्म से डूब कर मरने लगा? मैंने इन वहशियों से अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी जान बचाई है।
2: सुनो, मैंने एक कारवा तुम्हारे हवाले किया था, पर तुम एक आदमी के साथ वापस आए हो।
1: वो सिर्फ एक नहीं, आपकी बेटी है।
2: मेरे भतीजे का क्या? उसकी लाश वापस लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्या?
0: इन आलवियों को पैसा देके हमने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे जैसे बुजदिल पर यकीन क्यों कर लेते हैं।
1: पहली बार आपके कारवां पे लुटेरों ने हमला नहीं किया, हम हर बार उनसे लड़े हैं, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए था।
2: अगर पैसा नहीं चाहिए था तो उन्होंने हमला क्यों किया?
1: वो खून के प्यासे थे। कारवां में सब कुछ सही सलामत है सिवाय मर्दों के जिन्हें कत्ल कर दिया गया।
0: मैंने पहले ही दिन कहा था इन पे यकीन मत करो, आखिरकार देख लिया, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये सब तुमने खुद किया हो।
1: सही कह रहे हो, मैं चोर और कातिल हूं। मैं बेवकूफ हूं ना जो एक बेमालो दौलत कारमा पर हमला करूंगा और भागने की बजाय अकेला तुम्हारी बहन को बचाकर वापस लाऊंगा।
2: तो फिर तुम ही मुझे बताओ हिलाल, दिन दहाड़े मेरे कारवां को खाको खून में मिला दिया और तुम्हें पता भी नहीं कि ये किसने किया?
1: दुश्मनों की कमी नहीं है।
0: कुछ तो पता होगा।
1: जहां तक मुझे लगता है ये एक इंतकाम है।
0: बकवास कर रहा है।
2: जनाजों को इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाने का इंतजाम करूं।

0: पहले की तरह इसे भी बाजार तक पहुंचा देना, ठीक है?
1: बस इतना सा? पहली मर्तबा तो 10 बोरियां थी और अब बस इतना सा सामान?
0: क्या करूं, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी बहुत कम, और ये भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाया। पता है ना रास्ते में कितना खतरा है? इस मर्तबा तो सुना है कि शाम के रास्ते में रागिब बिन औसत के कारवां को भी लूट लिया गया है, सुना है ना तुमने?
1: किसने कहा ये?
0: कारवां के कासिद ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा। छोटे बड़े सबकी गर्दनें काट कर सहरा में फेंक दी गईं।

0: सच कह रहे हो?
1: मैंने तो जो सुना था वो तुम्हें बता दिया, हकीकत तो मुझे भी पता नहीं।
0: जहां तक मुझे पता है उस कारवां में तो एक मुहाफिज भी था।

0: मैंने अपने कानों से सुना है, रातों रात मदीने से निकल गए हैं।
1: अजीब उम्मत है मियां, अब तो खुदा ही हिफाजत करे, चलता हूँ।
2: किसी ने खबर की जांच पड़ताल की है कि बस ऐसे ही दावत दे रहे हो?
3: जनाबे हबीब ने खबर दी है, इससे ज्यादा क्या जांच पड़ताल होगी। आज इब्ने माविया के मुकाबले में इमाम की बैत ना करना मेरी समझ में तो कोई माकूल तरीका एकार नहीं है।
4: खुद से अंदाज लगा के इमाम की सियासत को नहीं समझा जा सकता। हो सकता है वापस जाके वो बैत कर ले।
3: रात की तारीखी में उनके पूरे खानदान को मदीने से निकाल दिया गया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमाम ने बैत नहीं की है।
5: उन्होंने इसलिए शहर छोड़ा ताकि खुदा के वली से जबरदस्ती बैत न ली जाए। जनाब
6: ऐसे में देखा जाए तो इनकी जान को भी खतरा है।
3: इमाम को कूफे की दावत देने का मेरा बस यही मकसद है। आखिर ये शियाने अली का शहर है, यहाँ हजारों घर इमाम के हैं और सब लोग इन पर कुर्बान हैं।
7: माफी चाहता हूँ।
3: खुदा की कसम, जब तक औलादे पैगंबर के कदम इस खाक पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोगों की आकिबत बेहतर नहीं होगी, समझे? एक हो जाओ अल्लाह के नाम के लिए, बिस्मिल्लाह करो।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने सुना है, यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सुनने में आया है कि रहने दे।
8: बताओ जो भी कहना है कहो।
3: रुको, बताओ क्या हुआ।
7: ऐसी खबर मिली है कि राघिब की दुल्हन के कारवां को शाम के रास्ते में लूट लिया गया है। छोटे बड़े सब जितने थे सारे के सारे कत्ल हो गए।
9: तो उसी कारवां में था।
6: बात तो एक तरफ है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि दामाद भी उससे ज्यादा उस्मानियों की खिदमत करने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाया। हम सभी को जलील करके रख दिया उसने।
2: खुदा अरहमुर रहीमीन बख्श देगा।
1: आमीन।
9: जरूर बख्शेगा
1: इंशाअल्लाह।
9: इंशाअल्लाह।
1: फातिहा मा सलावत।
2: अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले।
10: सामिया सुनो, फिक्र मत करो, उसके बाबा ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है, वो बख्शवा देंगे।
6: फिलहाल तो इस खानदान पर एक अजीम मुसीबत आ पड़ी है, बाकी बातें बाद में होंगी।
3: सब बैठ जाएं। इस वक्त इमाम के लिए दावतनामा लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है।
8: अहद के घर से एक खबर आई है।
3: बासित, जाओ तुम हिलाल का पता लगाओ।
7: जी अच्छा।
3: अच्छी खबर लाना। जो कत्ल होना था हो गया, अब आप हैं और आपका जमीर है।

0: अली के लाल के खिलाफ अम्बियों की जितनी चाहे बैत कर लें।
1: अगर कुछ देर तुम्हारी खबर ना मिलती तो खुदा की कसम मेरी तो जान ही निकल जाती।
2: मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से पहले मेरी मौत की खबर पहुंच जाएगी।
1: कुछ पता चला किसका काम था?
2: अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा।

0: अरे खानम, देखो जरा कौन आया है।
1: मामू जान।
2: सलाम मामू की जान।
1: कहाँ थे आप? परेशान कर दिया था।
2: परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ।
1: आपको क्या हुआ? ये फोन है।
2: नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा लग गया था। सलाम माँ।
3: सलाम।
2: कुछ नहीं।
4: आहिया, तंदूर लगाया या नहीं?
5: खुदा हाफिज, सलामत रही।
4: आओ आओ, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत। तुम मेरे पास मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत हो, मुझे जान से ज्यादा अजीज।
0: अरे तुम्हारी अमानत तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही सलामत है। लोग दुकान पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चलता हूँ।
5: खुदा हाफिज, सलामत रहे।
0: चलो बच्चे, खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
5: अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदार होते हिलाल। हंसो मत अब, अल्लाह की कसम मेरी जान निकल गई थी। तुम तो शाम के सफर पर गए थे और यहाँ तुम्हारी मौत की खबर पहुँच गई थी। मैं तो डर गई थी। वो बिला वजह नाराज नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान थी वो। जब से कारवां की खबर आई है, इनकी निगाहें दरवाजे पर ही है।
2: इसका क्या मतलब है? मैं अकेला अलवी नहीं हूँ जो उस्मानियों के कारवां के साथ जाता हूँ।
5: तुम अब इन सारी बातों को भूल जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तुम वहां तो मजे में थे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। हिलाल, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे?
2: बोलो।
5: बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो, सदका दे दो।
2: ठीक है। परेशान क्यों हो रही हो? इतना गहरा जख्म नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं अपने घोड़े जितना परेशान नहीं हूं।
5: जिस्म का जख्म तो बंद हो गया है, लेकिन मुंह बंद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, जिसका इलाज इस वक्त तो मेरे पास भी नहीं है।
4: क्या बात है? दिखता नहीं बच्चा सो रहा है?
5: थक गया है, अब इतनी जल्दी तो वो नहीं उठेगा।

0: जवान की तरह सारे काम करेगा। चलो
1: चलो आ जाओ।
2: और खूब और खूब देखे तो और क्या है? ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आखिर गई कहाँ वो?

0: खरीद लो इसे जल्दी से जल्दी।
1: कमाई कम थी लेकिन बरकत तो थी ना। अगर मेरे जानवरों के पास रहकर उनकी हिफाजत करते तो मेरा उतना नुकसान नहीं होता जितना अब हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता?
2: मुआफी चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे।
0: यकीन मानिए, अगर सारी दुनिया भी घूम लेंगे तो ऐसी कनीज कहीं नहीं मिलेगी।
3: क्या बात है तवक्कुल के बेटे।

0: मुझे एक मोटी ताजी लजीज भेड़ चाहिए सबके लिए।
1: सबसे अच्छी वाली दिखाता हूँ तुझे।
2: जरा उसे घुमा के दिखाओ, पता भी तो चले कनीज कैसी है।
3: चल घूम के दिखा, चल मुड़ दिखा।
4: सबीसो, मैं तुम्हारी कनीज नहीं हूँ, समझ गए?
5: जनाब, गुलामों को पर्दा कौन करवाता है? जरा सर खोल के दिखाइए।
3: नहीं जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। लीजिए देखिए। देखिए इसे, खोल के देखिए, कितनी खूबसूरत है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखिए इसे, बहुत खूबसूरत है ना। बताइए किसे चाहिए, बोलिए।
0: मैंने खरीद ली है, ये लो कीमत।
3: मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अच्छी शनाख्त है।
0: मुसलमान हो?
4: नहीं।
0: क्या कोई रिश्तेदार है? किस शहर से हो?
4: फिदान से हूँ।
0: घबराओ नहीं, मैं महफूज भेज दूंगा, आ जाए।
1: फिलहाल ये ठीक है, बेहतरीन है तुम्हारी नजर में।
0: बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने गुलाम आजाद कर दिया है।
6: खुदा कबूल करे इब्ने हनीफ, खुदा तुम्हारे भाई और वालिद पर और तमाम शुदाए इस्लाम पर रहमत करे। ये सदका दिया था या गुनाहों का कफारा? क्या तुम समझते हो कि गुलामों को आजाद करवा देने से तुम्हारी मालो दौलत पाक साफ हो जाएगी? इस तरह के कामों का कोई फायदा नहीं है।
3: शेख, तुम तो उस्मानियों के साथ काम नहीं करते हो ना? तुमने तो इस हुकूमत को कुछ नहीं बेचा, बस अपना ही पेट भर लिया, और जब दूसरों की बात आई तो उनका माल हराम हो गया। सही कहा ना मैंने?
1: बिला वजह क्यों तुम इन दोनों लोगों के दरमियान पड़ रहे हो?
3: क्या करूं, मेरे दिल को बिला वजह और फजूल की बातें सुनने की आदत जो नहीं है।
2: फजूल की बातें तो तुम कर रहे हो, पहले अपने मुंह की निजासत को पाक करो, फिर मुझे वाजू नसीहत करना।
3: अच्छे आदमी के पास जा रही हो।
0: अच्छा तो अब तुम हमारे फैसले करोगे, मेरा माल हलाल है या हराम इसे मैं ही तय करूंगा, तुम नहीं।
6: तुम जरा होश में काम करो, इन लोगों के साथ रहकर तुम भी अंधे हो गए हो। बेहतर यही होगा कि इस बात को मत भूलो, रागिब के पूरे कारवां में से खुदा ने सिर्फ तुम पर रहम किया था। खुदा अली के शियाओं का हामी और नासिर है, याद रखना।
0: खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई, और हाँ आपको मेरी सलामती के लिए दुआएं करने की कोई जरूरत नहीं। बोलने से पहले पूरी बात जान लिया करो, आ जाओ।
3: चलो जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो इब्ने हनीफ, बड़े अच्छे दिन गुजरेंगे। तो अब दूसरे की बारी। कोई है?
4: आप मुझे आजाद कर देंगे?
0: हाँ ऐसा ही करो।
4: फिदान भेज देंगे मुझे?
0: जी हाँ।
7: इब्ने हनीफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना?
0: अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि तुम अपना ख्याल रखा करो और लोगों से खुद को बचा के रखा करो, लोगों की नजरें अच्छी नहीं है। ये लो देखो तो, मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए।
0: फिरोजा, खुद लाई है?
7: खुद तो जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी आंखें असल और नकल की पहचान कर लेती हैं। ये देखो, नैशापुर का फिरोजा है, बुरी नजर से बचाता है, सिर्फ 3 सिक्के का है।
0: ले लूंगा, लेकिन इस फिरोजे से मेरा कुछ नहीं होने वाला, दुआ करना मेरे लिए।
7: तुम जैसे जवान को मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? इब्ने हनीफ, ये दो एक से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ले जाओ।
0: दुआ करना।
7: खुदा हाफिज।
0: चलो यहीं रुको।
8: लोगों, हमारे प्यारों के जनाजे आ गए हैं,
2: जनाजे आ गए

0: जाओ इसे यहाँ से।
1: जरासी का एहतराम करो, तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मरने वाला वापस नहीं आ जाएगा।
0: ऐसे में और भला मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं अपने शौहर की मौत का गम मनाऊं या फिर खुशी मनाऊं? ये मर्द, ये बेगैरत इंसान, ये अमीन का चचा जाद हमारी पीठ में खंजर घूम रहा था और हम बेखबर थे।
2: बाहर जाओ, बाहर जाओ।
3: तुम किसकी बात कर रही हो मेरी बच्ची?
0: बहुत देर से समझ आई, कारवां चल पड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, वो तो मुझे दरबार में ले जाकर यजीद बिन माविया के हवाले करना चाहता था। मैंने उससे अपनी इज्जत की भीख मांगी, कितना गिड़गिड़ाई पर उसने मेरी एक ना सुनी।
1: तुम पागल हो गई हो मेरी बच्ची, होश खो बैठी हो अपना, ले जाओ इसे यहाँ से।
0: पागल तो मैं तब हो गई थी जब उस सहरा में नंगे पाऊँ अपने शौहर की बेगैरती का शिकार हो गई थी।
3: ये क्या कह रही है?
0: मुझे तो लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो बेशर्मी से कह रहा था कि तुम आज से अमीरुल मोमिनीन यजीद की बीवी हो। मैं तो वही उसी वक्त बर्बाद हो गई थी।
2: नामुमकिन है, ये नामुमकिन है बाबा। हमारा चचाजाद भाई ऐसी गलती हरगिज नहीं कर सकता।
3: हाय, कितने अच्छे इंसान थे, ये क्या हो गया तुम्हारे शौहर के साथ? खुदा तुम्हारी खैर करे नायला।
0: इस बेगैरत इंसान की तरफदारी करना बंद करो।
1: चिल्लाओ मत नायला, चिल्लाओ मत। तुम कैसे किसी मरे हुए इंसान पर तोहमत लगा सकती हो?
0: मेरा यकीन नहीं करेंगे। बाबा मेरी तरफ देखिए, यकीन नहीं है आपको मुझ पे?
1: मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नहीं, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। बाकी बातें तशिए जनाजा के बाद।
0: तशिए जनाजा? कब से बेहरतों और बेजमीर लोगों का तशिए जनाजा होने लगा? हाँ
1: या अल्लाह,
0: काश मैं वहीं मर जाती तो ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती। मेरा यकीन करें, अगर ये बेगैरत जिंदा हो

0: होता तो इस वक्त में यजीद की कनीज होती और आप लोगों तक इस बात की खबर भी न पहुंचती।
1: तशिये जनाजे के बाद बात करेंगे।
0: काश इस अलवी सिपाही जितने ही बागैरत होते।
1: ज़बान संभाल के बात किया करो मुझसे।
2: मोहत साहब, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं होगा।
1: पूरे कूफे के सामने जलील हो गया। जल्दी करो, तशिये जनाजे का इंतजाम करो। तशिये जनाजे का इंतजाम करो।
3: लेकिन मैं कल सुबह तक इसके जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कफन और दफन कल होगा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज धीमी रखें, उसकी बेवा आपके रोने की आवाज नहीं सुन पाएगी।
1: घर का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। घर के लोगों के अलावा कोई ना आ सके।
2: रोना धोना बंद करें, इस घर के लोग गमजदा हैं। अपने अपने घर जाओ।

0: ये नहीं पहनूंगी, मुझे इसके मरने का कोई गम नहीं है।
1: या अल्लाह,
2: खुश आमदीद इब्न हनीफ। वैसे हम सब ने यहाँ पर आपकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं।
0: मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि आपके सामने शुक्रिया अदा करूं उस एहसान का जो आपने मुझ पर किया है। बस मैं ही जानती हूं कि आज मुझे जो सुकून मिल रहा है उसके पीछे कितनी सख्तियां थी, कितनी मुसीबतें झेली हैं मैंने।
1: अजीम मुसीबत है, तसलियत अर्ज है। मैंने आपकी जान की हिफाजत के लिए सदका दे दिया।
2: आपको लंबी उम्र दे,
1: सलामत रहे। आप पर जो भी मुसीबत पड़ी है उसका असल जिम्मेदार मैं हूं, शर्मिंदा हूं। ये फिरोजा बलाओं से बचाता है, हमेशा अपने पास रखिएगा।

0: औहद साहब,
1: क्या हुआ?
0: ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ पता करवाया है आपने? ये हमारे और बनी उमैया के दरमियान की बात है।
1: पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी अफवाह लोगों तक पहुंचे। जितना हो सके खामोश रहो।
0: नहीं पहन रही है वो, बहुत कोशिश की है मैंने। तशिया जनाजा में तो आएगी नहीं, और मैं जानती हूँ कि वो सोग में भी ये नहीं पहनेगी।
2: बाबा से जरूरी बात करनी है।

0: अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बात नहीं कर रहा है तो मैं जाता हूँ। 10 मरतबा फातिहा पढ़ लिया, अब भेज चुप है।
1: मैं इस बेगैरत के बारे में अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि ये यजीद के पास जा रहा है। नायला ने बिल्कुल सच कहा है।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: ये दिन तो मैंने ख्वाब में भी ना देखा था कि मैं अहले बैत रसूल के शक की तरीन दुश्मन के सर को लिए खड़ा हूंगा। करबला के उम्मुल फितना का सर, सालहीन का अमीर और आलिया के खून के मुंतकिम जनाब अमीर मुख्तार को पेश करता हूं।
2: क्या तुम आशिफ हो मुख्तार?
3: मेरा जाहिर क्या बताता है?
2: तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार, तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना।

0: लंगड़े हो, खड़े नहीं हो सकते, गूंगे भी हो।
1: खलीफा आ गए हैं, देख नहीं रहे?
2: अंधे हो, नहीं देख रहे? वल्ला की मजबूत रस्सी को थामे हुए है, उसके जिक्र में क्यों हायल हो रहे हो? अस्सलामु अलैकुम। अहलन वसहलन।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: ये कैसी मेहमान नवाजी जाहिल कहीं के? क्या इस खंडर में थोड़ा सा पानी या कोई खजूर नाम की शय नहीं पाई जाती कि पसीराई हो सके? ये बेचारे तो माजूर हैं, इन्हें नरम गद्दी पर बिठाना चाहिए, न कि जमीन सख्त पर। खुदा लानत करे तुम लोगों पर, खुदा लानत करे तुम सब पर। तुम लोगों को सिर्फ हमारी बेइज्जती करवानी आती है।
0: मैं कुर्बान जाऊं आप पर, हमने चाहा कि हम अखीरों के दोस्त पर बैठ के आ जाएं, हमने चाहा कि किसी नरम गद्दी पर तशरीफ रखें और कुछ पानी पी लें, मगर ये खुद मुसिर हैं कि जमीन पर बैठें और किसी चीज को मुंह न लगाएं।
3: कोई गिला नहीं है, इस बेनवा की सरजनिश मत करो, असल मौजू पर आओ। क्यों बुलवाया है मुझे?
2: मैंने चाहा कि तुम आओ और हम बैठकर मुसलमानों की इस अफसोसनाक हालत पर कुछ गौर करें। तफर्रुका इब्ने अली, इस तफर्रुकेबाजी ने दीन के पाक दरख्त पर टिड्डी दल की तरह हमला कर दिया है। अगर हम इसकी खबर न लें तो वो दीन की जड़ को खोखला कर देगा।
3: मुझ बेकार और माजूर शख्स से क्या काम है तुम्हें?
2: ये बेकार बीमार शख्स कोई झूठा आदमी नहीं है, खानदान और असर नसब के लिहाज से रसूल खुदा के भतीजे हो। तुम्हारे मुरीद इराक में अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले हैं, अलबत्ता तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मुरीदेन हमेशा दो चार हाथ हंसे गुजर ही जाते हैं, तो उन्हें महार करो ना बनता है खुदा। मुख्तार ने तुम्हारे नाम से इराक में लोगों का माल हड़प करना शुरू कर दिया है, लोगों के दिलों

0: में अपना खौफ बिठा रखा है उसने। कहता है उसके पास तुम्हारा हुक्म है।
1: मैंने मुख्तार को कोई हुक्म नहीं दिया।
0: मैं जानता हूं, अगर तुमने मुख्तार को हुक्म दिया होता तो तुम अपने चचा की शरीयत को पीठ दिखा देते। आप इस गुनाह कबीरा से मुबर्रा हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बलून के झूठ को लिखकर भेज दें ताकि लोग समझ जाएं कि उन्होंने एक झूठे शख्स के हाथों बेहद की है।
1: मैं ये नहीं कर सकता।
0: क्या फरमाया आपने?
1: नहीं कर सकता बंदे खुदा। रवा नहीं है कि मैं मुख्तार और उसके क्याम पर जुल्म करूं। उसने मेरे मजलूम भाई हुसैन के इंतकाम के लिए क्याम किया है ताकि हमारे दिलों के जख्मों के लिए एक मरहम बन जाए। वो इस हक के साथ उठाए कि तुमने सिर्फ उसका दावा किया था। आशूर के मकतूलीन के तमाम वरसा मुख्तार के लिए दुआ को हैं।
0: अली के बेटे, मुख्तार ने अपने इस अच्छे काम का सवाब अपनी जाह तलबी के बायस कमा दिया है। खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ एक बहाना था। मुख्तार का असली इरादा दोनों इलाकों की बादशाहत का उसूल है। उसने खुतबा पढ़ा है, हमारी बैत तोड़ चुका है, हमारे हुक्काम को माजूर कर दिया, उसने फौज तैयार कर ली है और ऐसी हुकूमत तैयार कर चुका है जो सुफियानी काफिरों से ज्यादा खौफनाक है। आप मसलहते मुस्लिमीन को तरजीह देते हैं या चंद लोगों के जाती मफादात को? ज्यादा बहस मत करो, मुख्तार को एक खत लिखो और मामला खत्म करो।
1: मेरे मुख्तार को खत लिखने से तुम्हारे कामों में कोई गिरह नहीं खुलने वाली।
0: तुम सिर्फ एक खत लिख दो, गिरा खोलना मेरा काम है।
1: मुख्तार मेरा नुमाइंदा नहीं है कि मैं उसे खत लिखूं। मुख्तार खुद मुख्तार आदमी है, चाहे हुकूमत पे रहे या ना रहे। मैं ना तो उसे हुकूमत पर रहने की नसीहत करूंगा ना छोड़ने की। वस्सलाम।
2: सही।

0: कहाँ हो अबू अब्दुल्ला? आजकल नजर ही नहीं आते।
1: आपके जेरे साया मशके करते हैं ताकि जिहाद अकबर में पीछे ना रह जाएं। मैंने कसम खाई थी कि आपके मेंबर के नीचे बैठने वालों में से रहूं, जो कि हूं। बिना मुबालगा आज तक आपके एक खुतबे को भी नहीं छोड़ा मैंने।
0: किस तरफ मस्जिद में बैठते हो कि नजर ही नहीं आते?
1: किसी ऐसे कोने में बैठता हूं कि खतीब की नजरों में ना आ सकूं।
0: क्यों?
1: दो वजूहात के तहत अबू साक, रियाकारी से भी बचना था और कयाम के गनाइम और लालच से भी बचना चाहता था। अगर हमने आपके साथ मिलकर कयाम किया था तो एक ऐसा फर्ज था जो हमारी गर्दन पे सवार था, बगैर किसी लालच और मकसद के। कयाम के बाद फासला इसलिए अख्तियार किया ताकि आप पर बोझ न बन जाएं। मुझे यकीन था कि जब कभी मेरी जरूरत होगी अमीर मुझे बुलाएंगे।
0: नीयत जदली मुझसे पोशीदा नहीं है। अगर मैंने अब तक तुम्हें नहीं बुलाया था तो इसकी वजह यह थी कि मैं बड़े कठिन मैदानों के शेर को छोटे मोटे और मामूली कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस वक्त हम के मामले में एक ऐसी गिराह लग गई है जो सिर्फ तुम्हारे हाथों ही खुल सकती है।
1: कह दें कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी, मैं बगैरत हूंगा अगर जरा बराबर भी कराहियत का मुजाहरा करूं या अपनी जान देने से दरेक करूं।
0: पेशर जुबैर ने सैयद को जमजम के करीब एक खीमे में कैद कर लिया है और उसने ये धमकी दी है कि अगर हमने सर तस्लीम खम न किया तो वो उन्हें कुछ हाशमियों समेत जिंदा जला देगा।
1: जुबैर के मनहूस बेटे से कुछ भी बईद नहीं। मुझे क्या करना होगा?
0: तुम्हें उमरा करने जाना होगा एक ऐसे लश्कर के साथ जो बगैर तलवार और जंगी लिबास के हों। तुम सबको एहराम पहनना होगा और अपने आप को सैयद के पास पहुंचाकर उन्हें उस चुंगल से निजात दिलाना होगा और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना होगा।
1: हमें किसी ताबड़तोड़ हमले की इजाजत है या नहीं?
0: ताबड़तोड़?
1: लकड़ी लाठी। जुबैरियों को डराने के लिए ये जरूरी है।
0: मगर इतना ध्यान रखना कि हरम काबा में कोई खून न बहे, और हाँ, काम मुकम्मल होने तक किसी को भी तुम्हारे उस गैर मरे लश्कर की खबर तक न होने पाए।

ये दुआएं तुम्हारे मुंह पर मारी जाएं। इतने सारे जव्वार हैं, एक बीमारियां माजूर नहीं जो हमसे ये तख्ते किराए पर ले लें।

0: ये कैसा नारा है? हमारा खून हुसैन से क्या वास्ता?
1: माफी चाहता हूँ भाई।
0: जाफर, ये क्या शोर शराबा है?
1: मोहम्मद इब्ने अली को चुरा कर ले गए।
0: चुरा कर ले गए? क्या वो सोना था जो चुरा लिया गया?
1: कुर्बान जाऊँ आप पे, मुख्तार के आदमी लाठियों के साथ सहने काबा पर हमलावर हो गए और अली के बेटे को अपने साथ ले गए।
0: खुदा तुम्हें सुनाबूद करे मुख्तार। जावर, हिजाज से दो लश्कर लेकर जल्द अज जल्द बसरा में मुसब के पास पहुंचो। महल्लब को आहवास से बुलवा लो और कूफे पर हमला कर दो।

0: सरदार जुबैर के बुगजोकी ने की आग में जल जाते और शिया फिर से एक बहुत बड़े गम में दागदार हो जाते। खुदा की कसम मैं इस हक में नहीं था कि बनी जुबैर से कोई जंग की जाए, मगर मैं क्या करूं, इस कौम के कान हक बात को सुनते ही नहीं हैं, इनकी आंखें सच्चाई को देखती ही नहीं और न इनके दिल में खौफ खुदा है। मैंने जितनी भी कोशिश की कि मुसालहत, मुजाकरात और खतो किताबत के जरिए कूफे और मक्के के ताल्लुकात को बहाल करूं, कोई फायदा न हुआ। बनी जुबैर की एक ही जिद है कि हम कूफे को उनके हवाले कर दें।
1: तो तस्लीम कर देना, आखिर कब तक जंग के नगारे बजाना चाहते हैं? आखिर कूफे वाले जुबैरियों से लड़ने कैसे चले जाएं जबकि उन्हें शामियों के खिलाफ लड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ओ अबू उबैद के बेटे, मैं कम अज कम मूसल से यहां तक इसलिए नहीं आया कि वाज़ो नसीहत के मिंबर तले बैठ जाऊं। मैं तुम्हारे और अश्तर के बेटे की मनमानियों से तंग आ चुका हूं। मैं अपना हक मांगने आया हूं।
0: बहुत खूब, बताओ किसने तुम्हारा हक खाया है?
1: झूठी हुकूमत ने मेरा हक खाया है। मूसल की सरजमीन को मुझ जैसों ने फतह किया और उसके खजाने तुम लोगों के हिस्सों में आ गए। आप लोग जो सुन्नत रसूल की बातें करते हैं, माले गनीमत को फौजियों के दरमियान इंसाफ से क्यों नहीं बांटते? ऐ लोगों, अगर मूसल की सरजमीन से हासिल होने वाले गनायम को आदिलाना तरीके से बांटा जाता तो हर कूफी मुजाहिद को अच्छा खासा सोना मिल जाता।
0: तुमने और तुम्हारे साथियों ने जंगी गनायम की तकसीम पर जो एतराज किया है उसकी खबर हमें मिल चुकी है इब्ने हुर। तो मैं एतराज करने के बिना पर सरजनिश नहीं करता, मगर इन बातिल अकायद को नशर करने की वजह से तुम सजा के हकदार हो। तुम्हारा हक सिर्फ उतना ही है जो इब्राहिम ने मुअय्यन किया, यानी लश्कर खुदा से निकाला जाना। खुदा की फौज कस्ते कुर्बत से मैदान जंग की तरफ जाती है बंदाए खुदा, न कि माले गनीमत की लालच के लिए।
1: मुख्तार, कोई भी अकलमंद आदमी माले गनीमत के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। मुझ जैसों ने आज तक बेखौफ होकर तुम्हारी रकाब में तलवार चलाई है और किसी खतरे से फरार नहीं किया। अदल व इंसाफ पर अकीदा रखना भी हमने आप ही से सीखा है। क्या हो गया कि नाइंसाफी पर एतराज को मुजर अकायद शुमार कर रहे हैं?
0: बगैर सोचे समझे और बेबुनियाद और जाहिलाना एतराज मुजर होता है। तुम हुकूमत चलाने के मामलात में से जानते ही क्या हो नौजवान? जो कुछ माल गनीमत की मद में हासिल होता है वो सबका सब फौजियों का हिस्सा नहीं होता है जिसे इंसाफ से बांट दिया जाए। सबसे पहले माल गनीमत का कुछ हिस्सा बैतुल माल का हिस्सा है जिसे लोगों की जरूरियात पर खर्च किया जाता है। दूसरा ये कि फौज के खाने पीने के और दीगर खर्चे भी हैं जो इन्हीं पैसों में से पूरे किए जाते हैं। तीसरी बात यह कि तोहमत लगाने के बजाय साबित करो कि इब्राहिम अश्तर जो मूसल की फौज का सिपहसालार है उसने तुमसे जो एक आम फौजी हो एक दीनार भी माल गनीमत ज्यादा लिया है ताकि मैं उसे फौज से निकाल दूं और उस पर हद जारी कर दूं।
1: मैं ये साबित करता हूं कि आप लोगों के दावे सब झूठे हैं। ऐ लोगो, मुख्तार वही शख्स नहीं जिसने ये दावा किया था कि अपने कियाम की कामयाबी के बाद हुकूमत को शूरा के हवाले कर देगा? क्या इसने हुकूमत की कुर्सी छोड़ दी? तो जब हुकूमत को शूरा के हवाले कर दोगे मैं ये भी मान लूंगा कि तुम्हारी अदल की बातें भी झूठी नहीं थी।
2: रुक जाओ नमक खराम, अमीर मुख्तार की गैरत और हया की कसम, अगर अपने तारीख अफकार से दस्तबरदार ना हुए कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा।
1: बाँ। मैं अगर तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से डरता होता तो कभी तुम्हें पत्थर ना मारता।
0: बेशुमैत, खुदा के घर की हुर्मत का पास रखो, जाने दो इसे मेरे भाई।

0: अमीर, इब्ने हुर एक पागल और मनमानी करने वाला शख्स है। मुमकिन है बनी जुबैर ने उसे खरीद लिया होता कि हमारे दरमियान फूट पैदा करे। अगर उसके गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कल से हर एरा गैरा आपके सामने शेर बन के खड़ा हो जाएगा और अपने अजदाद की खोई हुई मीरास का मुतालबा करेगा।
1: बिन शुमैत, एक मुसलमान हाकिम पर एतराज करना हर मुसलमान का हक है। यही मौला अली का तरीका था। हम उसके अकायद के जुर्म में उसे तंबीह नहीं कर सकते। जब वो तलवार निकाल ले और शर फैलाए और लोगों की जिंदगियां हराम करने लगे, फिर हम उसे उसके अमल की सजा देंगे।

0: भाई हो। इब्ने हुर ने एक ऐसी बात भी की जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। खुदा ने चाहा तो बनी जुबैर के मामले से फारिग होने के बाद हुकूमत को लोगों की राय के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत एक आजाद और अवामी हुकूमत है।
1: छींक आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है कि नामहरम हमारी आवाज ना सुन लें। सारा दिन हमें अपने घर में सुकून से कोई काम करना भी नसीब नहीं होता। आखिर तुम लोगों को जरूरत क्या थी यहाँ पर आकर रहने की? तुम लोग जो अपने साए से भी डरते हो और हर वक्त सिपाहियों को तुम लोगों की हर जगह हिफाजत करनी होती है, तो फिर अपने उसी जहन्नुम महल में जाके क्यों नहीं रह लेती? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये बेहिसी आम रहेगी। मैं कहती हूँ खोलो इस तबेले के दरवाजे को।
2: चुप हो जाओ औरत, बदतमीजी करोगी तो तुम्हारी शामत लगा दूंगा।
1: जचता है तुम पर और तुम्हारे जाबिर अमीर पर जचता है। आओ आओ मेरी शामत लगाओ बगैर तो।
3: लानत है शैतान पर।
2: हेफे के अमीर मुख्तार की हुकूमत में औरतों की तोहिन जुर्म है, वरना मैं तुम्हारे बाल पकड़ कर घोड़े से बांध देता ताकि तुम्हारा मुंह आइंदा बदतमीजी और बेगैरती के लिए ना खुल पाए।
1: औरतों की हुर्मत तो उस अमीर को होती है जो मुसलमान होता है और हलालो हराम की तमीज होती है, ना कि तुम और तुम्हारे उस खूंखार ज़ालिम अमीर को। आओ आगे आओ आओ, मेरी अबाया उतार कर मेरे बालों को घोड़े की दुम से बांध दो।
4: नहीं नहीं, उसे मत छूना वरना अपनी औकात दिखा देगी। उसे जानते नहीं हो तुम लोग, ये औरत कल तक सिर्फ एक रेशमी रुमाल थी अपने शौहर की कबा की जेब में। जब से इब्ने हुर ने अपनी इज्जत का आले जुबैर के हाथों सौदा कर लिया है, तब से अपने रेशमी रुमाल को अपने मकासद को पाने का जरिया बना लिया है।
1: एक देख दूसरी देख को कहती है तुम्हारा मुंह काला है। हो सकता है कि मुख्तार की बेगैरती मेरे शोहर में भी सरायत कर गई हो। कल तक इब्ने हुर मुख्तार की रकाब में था तो उसकी गैरत पहाड़ जैसी थी। जब से मुख्तार ने अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमत के तख्त पे राज कर सके, तो मेरे शोहर जैसे लोग बेगैरत हो गए हैं। अरे लोगो, ये मोहल्ला सिर्फ एक मुख्तार का है या हम सबका? आखिर क्यों रोजाना सिपाहियों के बड़े बड़े रेवड़ आते जाते रहते हैं और लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं? एक दिन, दो दिन, दस दिन, एक महीना, एक साल, आखिर कब तक हम इतने ढेरों ढेर सिपाहियों के जेर साया सांस लेते रहे और चिल्ला भी नहीं सकते? खुदा ना खास्ता मुख्तार 100 साल तक बादशाह तो नहीं करना चाहता।
4: मुख्तार की 100 साल की हुकूमत तो पुरानी बात हो गई है, मगर मुख्तार इतने अरसे हुकूमत करेगा कि तुम और तुम्हारा शौर घुट के मर जाओ। इस घर में तो हमेशा से आना जाना लगा रहा, ये आना जाना कल तक तुम्हें क्यों तकलीफ नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम और तुम्हारा वो रंग बदलने वाला शौहर कल तक मुख्तार के नाम का सीना पीटते थे। आज मुख्तार बुरा बन गया है, क्योंकि जो रकम मोहतरमा के शौहर को दी गई है वो इस नवाबजादी के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। इसे शेरनी बना दिया है ताकि ये मुख्तार के खिलाफ खड़ी हो सके।
1: हर खुला दरवाजा और बिछा हुआ सुफरा रख रखाव नहीं होता। वैसे मैं भी कुछ अरसे पहले अपने दरवाजे पर इस मलका की तरह काफी चहल पहल रखती थी।
4: बकवास बंद करो बासारी औरत, लगता है कि वसाइल को हसरत से देखने ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जबान खोल दी है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हारी सारी इज्जत की दास्तानें खोल दूं।
1: अरे लोगों, आखिर हमारा जुर्म क्या है कि 4 दिन इन तंग करने वाले सिपाहियों के बगैर सुकून से जीना चाहते हैं? हमें इसका हक है कि नहीं? ये कैसी हुकूमत है जो पड़ोसी के हुकूक तक तो जानती नहीं है और पड़ोसी के एतराज का जवाब तोहमत से देती है? या तो तुम लोग ये मोहल्ला खुद छोड़ दो या फिर मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूँ।
4: हाँ हाँ, आखिर पालतू किसकी हो? इब्ने जुबैर के कुत्ते जो ठहरे। ये मोहल्ला किसी की जागीर नहीं है मोहतरमा। जब इब्ने जुबैर ने वो सोना जो उसने तुम्हारे शोहर से वादा किया था वो दे दिया और तुम्हारे शोहर ने मोहल्ला खरीद लिया और तुम्हारे नाम कर दिया सर आंखों पर, फिर हम ये मोहल्ला छोड़ देंगे। और हाँ, आज की बात मैं ये ना देखूं कि तुम शोर शराबा करो और सारे मोहल्ले को सर पर उठा लो। ये सिपाही मर्द हैं और इन्हें शर्म आती है कि तुम जैसी जबान तराज औरत के मुंह लगे। मगर मैं औरत हूँ, सुन रही हो ना नीली आंखों वाली मुंहफट औरत? खुदा की कसम खाकर कह रही हूँ, अगर दोबारा तुमने जबान तराजी और बेहयाई दिखाई तो तुम्हारी नजिस जबान को अपने इन पंजों के जरिए तुम्हारी हलक से खींच लूंगी।
1: तुम्हारे पंजे तुम्हारे उस जल्लाद चौर की तलवार से ज्यादा तेज नामों तो कुछ कम भी नहीं है। खुदा ने

0: पंछियों की क्या खूब जोड़ी बनाई है। मुझे अपने तेज पंजों से डरा रही हो? हम भी कोई माजूर नहीं हैं। अब जब लड़ने की ठान ही लिया तो आओ लड़ो, देखते हैं किसके नाखून और दांत ज्यादा तेज हैं।
1: खुदा तुम्हें माफ न करे मुख्तार, तुम्हारी रोटी पानी कम पड़ गई थी क्या जो तुमने हुकूमत करने की ठान ली? ये क्या मुश्किल खड़ी कर दी तुमने। आप कहाँ जा रही हैं दुम्माजान? आप कोई घर तो नहीं है?
2: तुम अपने शौहर से बात करने आई हो मेरी बच्ची? मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है ताकि तुम खुल के बात कर सको।
3: हम सुन रहे हैं बानो।
1: आज तुम बहुत याद आए। आज अपने हुर की बीवी मारिया ने तुम्हारे घर का दरवाजा पीटा, तुम्हें और तुम्हारी हुकूमत को नजिस करके चली गई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं।
3: मेरी कोई ज्यादा कमी भी नहीं थी, उसके शौहर ने भी आज खुदा के घर में मेरे खुतबे को तोड़ दिया। मुझे चोर, झूठा और दगाबाज कहा और चला गया।
1: तुम कुछ करोगे नहीं?
3: क्या करूं? तुम तो जानती हो कि ये सब उछलने वाले बनी जुबैर के पालतू चेले हैं। कूफे की आवाम को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उनकी खयानत सरेआम साबित हो जाने तक मैं कोई कदम उठाऊं ये खिलाफ मसलहत होगा।
1: मेरा दिल इस बात पर जल रहा है कि सारी जिंदगी इज्जत के साथ जीने के बाद आज हम बेइज्जती झेलने पर मजबूर हैं, वो भी उस मनसब की वजह से जिसकी उम्र फूल की तरह मुख्तर सी होती है। आज है और कल धुआं बन जाएगा। ऐसे दिन भी थे कि तमाम कूफे वाले मुख्तार के नाम की कसम खाते थे। हमें कैसी ढारस थी कि जरा कुछ होता था तो हमारा वारिस हमारी फौरन सुनता था। जब से तुम्हारे कदम इस वीरान महल में आए हैं सभी कुछ बदल गया। तुम झूठे, दगाबाज और चोर बन गए और मैं एक गिरी हुई औरत। तुमने इसलिए जंगें लड़ी कि आज तुम यहां पहुंच जाओ? क्या ये महल, ये ताज, ये तख्त तुम्हें इतना अजीज है कि लोग तुम्हारे सर को कलम करते हैं और तुम कुछ ना बोलो?
3: सोच समझ कर बात करो नारिया। जंग एक ऐसा फरीजा है जो दीन ने मुझ पर लागू किया है। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो मैं भी पिछले बादशाहों की तरह महल और तख्त से चिपक जाता और मेरी पैगमात हो सभी महलों की मलकाएं होती। तुम और उमरा कल अपने अपने घरों को गई हो, कल मैं भी आ जाऊंगा।
1: कौन सा कल? शायद ही कल 100 साल बाद आए। अगर तुम्हारे दिल में रियासत की तलब ना होती तो तुम इस जादुई महल में एक लम्हा भी ना रुकते।
3: कौन जालिम है नारिया, तुम या मैं? जुल्म नहीं कि एक उम्र मेरे साथ गुजार देने के बाद भी तुम मेरे दर्द को न समझ पाओ?
1: तुम्हारा मसला कातलाने हुसैन का था कि जिन्हें तुमने मार दिया है। हुकूमत में रहने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता मुख्तार। जरा गिनो तो तुमसे पहले कितने बादशाह इस महल में आए और उनका क्या अशर हुआ। देखो इससे पहले कि देर हो जाए अपने आप को और हम को इस मुश्किल से निजात दिला दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ मुख्तार, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कम से कम एक बार मुझ बेवकूफ की बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी।
3: कातलाने हुसैन में से कुछ लोग जुबैरियों की पनाह में और हमारे खिलाफ फितना अंगेजी कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो उनके शर को दफा करके इस कुर्सी को छोड़ दूंगा और हुकूमत को आले अली के हवाले कर दूंगा। और तुम भी मारी और जैसी औरतों के एतराजात पर दिल छूटा मत करो। कुछ दिनों के लिए दिल पर पत्थर रख लो, खुदा तो देख रहा है ना। ये मसलू

0: कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? हमसे क्या चाहते हो?
1: घबराओ मत बुढ़िया, हम मुख्तार के दोस्तों में से हैं।
0: मुख्तार? मुख्तार तो औरतों पर वार नहीं करता।
1: तुम्हारा शोहर कहाँ है?
0: शोहर? वो तो एनएल वर्दा की जंग में शहीद हो गए थे।
1: अच्छा, तो फिर तुम मुख्तार की खास हिमायतों से भी माला माल हो।
0: रहम करो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो क्या? मेरे पास कोई भी सोना नहीं है, अपना पेट काट के यतीमों को पालती हूँ। रहम करो।

0: अरे ये क्या किया है हमारे साथ, इस सारे नाहक खून पर किसका कसूर है? क्या ये थी वो इंसाफ की हुकूमत जिसका तुमने वादा किया था?
1: पीछे रहो, अमीर तुम लोगों की बात सुन रहे हैं।
2: ये क्या तमाशा है जो हमें पीछे हटा रहे हो? मैं अमीर को देखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हटो मेरे सामने से।
1: फजूल की बातें मत करो बहन, अपना शिकवा बयान करो। अमीर सुन रहे?
2: अंधे हो, मेरा शिकवा मेरे जख्म है, मेरा शिकवा मेरा वीरान घर है, मेरा शिकवा ना अमन हालात है, मेरा शिकवा ना इंसाफी है। अगर अमीर के कान सुनने वाले होते तो आज इन फकीरों गरीबों का ये हाल ना होता।
3: ऐसे आने का रास्ता दो सिपाही। आगे आओ बहन, इधर आओ।

0: क्यों को मेरे मुंह पर?
1: मेरे मुंह में खाब।
0: बिन कामिल, इसी वक्त इब्ने हुर के घर जाओ, उसके घर को वीरान कर दो और उसके घर वालों को कैद कर लो।
2: क्या ये बेहतर नहीं होगा कि
0: जो हुक्म दे रहा हूँ वही करो? बिन कामिल, क्या समझाना चाहते हो? कुछ लुटेरे लोगों के घरों पर हमला आवर होते हैं, तोड़फोड़ और जलाव घेराव कर रहे हैं, तुम्हारी और तुम्हारी सिपाहियों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, हुकूमत को नालायक और कमजोर दिखाना चाहते हैं, और तुम ये समझाना चाहते हो कि मैं अपने गुस्से को ठंडा कर लूं और नरमी से काम लूं, इतनी रोने की आवाजों को न सुनूं? अगर मैं इन सिपाहियों का सरदार होता तो इब्ने हुर की खाल को नोच कर रख देता। या तो हमें लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी आती है।

0: कल रात औरतों और बच्चों के साथ जो सुलूक हुआ है उसके कसास में इस घर को तबाह और बर्बाद कर दो।
1: तबाह कर दो? मुख्तार जैसे खुखार से यही तवक्कु की जा सकती है?
0: तुम्हारा नामर्द शौहर किस सुराख में छुपा हुआ है?
1: नामर्द तो तुम लोग हो जो एक औरत पर हमला कर रहे हो। तुफ है तुम लोगों की गैरत पर। तुम लोगों ने शर्मो हया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर कुछ गैरत होती तो अपनी दाढ़ियां मुंडवा कर अबाया ओढ़ लेते और वो ही बेहतर होता। मेरा शौहर बीच मैदान में है, दम है तो जाओ शिकार कर लो, उसके घर वालों से क्या लेना देना।
0: चमगादड़ दिन में तो छुपता फिरता है और रात को मैदान में आ जाता है, उड़ता फिरता है, इसे कैद कर लो।
1: मैंने उस अदलो इंसाफ का फातिहा पढ़ लिया जो गुनाहगार मर्द के बदले में उसकी बेगुनाह औरत को सजा देता है।
2: बेहरत मर्द की बेहरत बीवी के बालों को घोड़े की दुम से बांध कर घसीटना चाहिए था, ताकि इसके बेहरत शोहर को पता चले कि यतीमों और बेवाओं के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है।
1: मेरा शोहर तुम्हारा फौजी था, उसने कोई कम तलवार चलाई? कम जाने सारी दिखाई उसने, क्यों बागी हुआ वो? हाकिम का फसाद रियाया को बागी बना देता है और सरदार का फसाद फौजी को। तुम लोगों ने मेरे शोहर का हक मारा तो वो तुम्हारा दुश्मन बना, और फिर मेरे शोहर की तुम लोगों से दुश्मनी का मुझसे क्या वास्ता? क्या यही एक मुसलमान का तरीका कि एक औरत पर हमला करके लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ाया जाए? क्या यही थी वो अली की अदालत जिसका नारा लगाते थे?
3: शौहर कहाँ है तुम्हारा?
1: मेरा शौहर दड़बदर और बेघर है। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो उसके पास चली जाती और अपने आप को तुम लोगों के पंजों की दर्द से बचा लेती।
0: इस औरत की जबान हद से ज्यादा तेज है अमीर, मीठी जबान से मुंह नहीं खोलेगी।
1: मुझे किस चीज का इकरार करना होगा? उस गलत तोहमत का जो तुम लोगों ने मेरे शौहर पर लगाई है? किसने देखा कि मेरे शोहर ने कल रात को लोगों के घरों पे हमला करके जलाया, तबाह किया और मारा वगैरह वगैरह? ये तुम लोगों की अपनी चाल है कि तोहमत के जरिए अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना चाहते हो। मेरे शोहर में इतनी शुजात है कि वो अपने हक को खुल्लम खुल्ला सारे जमाने के सामने मांग सकता है।
3: ये सामने आ गया कि तुम और तुम्हारे बेगैरत शौहर ने बनी जुबैर की मदद से हमारी हुकूमत की कब्र खोद डाली है। साजिश हर लिहाज से नबी तुली हुई है। हाँ, हमारी गैरत और इंसाफ का यह तकाजा नहीं है कि किसी बेशर्म और बदतमीज औरत पर तलवार उठाए। मुमकिन है तुम्हारा बदमाश मिजाज शौहर भी यही तवक्को रखता होगा, जब भी खुद तो चूहों की तरह भाग निकला और एक चौड़ेल को हमारे लिए छोड़ गया। मगर मैं मुख्तार साकफी ये साबित कर दूंगा कि मैं शैतानों की साजिशों से वाकिफ हूं और उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धान में डाल दो इसे, कल लोगों के दरमियान तुम्हारा इस तरह किसास करूंगा कि अब तक किसी ने ना देखा ना सुना होगा।
1: इसकी बकवास के धोखे में मत आना मारिया, इसने तुम्हें इसलिए डराया है ताकि तुम डर जाओ और अपने शोहर को रुसवा कर

0: तुम लोग कितनी नमाज शब पढ़ते हो, तुम लोगों को खुदा का
1: मुख्तार क्या करना चाहता, वो कुछ नहीं कर सकता। हम ना करबला में थे, ना हमने किसी का माल खाया है और ना ही लोगों का कोई नुकसान किया है।
2: मैं तो मुख्तार के गुस्से से डरता हूँ,
3: उसने तो कभी अपने पराए पर रहम ही नहीं किया।
2: मैंने तो ये भी सुना है कि उम्र साहब को देर में पका दिया गया है।

0: यकीन नहीं आ रहा तुम्हें?
1: ये ख्वाब है या हकीकत?
0: समझ लो कि तुम ख्वाब देख रही हो। अपने ख्वाब को जारी रखो, जल्दी करो, वक्त कम है।
1: मैं अपने शौहर की गैरत और मर्दानगी पर नाज करती हूँ।

कोई मसला तो नहीं हुआ? लगता है जब से अबू उमरा खाना नशीन हुआ है मुख्तार की कमर टूट गई है। तुम लोग ऐसा करो कि जाओ और अभी और इसी वक्त को चालाक बदमाश और बेमिसाल लोगों को जमा करो। चार ग्रोहों में बट जाओ और चार मोहल्लों पर शबकून मार दो और सिपाहियों को उलझा के रखो ताकि इतनी देर में हम कूफे से दूर निकल जाएं। जैसे ही खतरा टल जाए जिसरे अकबर पर आकर हम लोगों से मिल जाना। इंतजार करूंगा।

0: एक फौज का बागी हुकूमत के अड्डे पर हमला कर देता है, उसका निवाला चुरा कर भाग निकलता है और हम पर और हमारी हुकूमत पर कहकहा लगाकर हंसता है, कैसा लगता है बताओ मुझे? ऐसी हुकूमत जिसके तमाम साहिबान मनसब अफराद अंधे गूंगे और बहरे हैं। ऐसी हुकूमत के बाकी रहने की उम्मीद रखी जा सकती है क्या? यह हमारा ही कसूर है जो भुगतना पड़ रहा है। इब्ने हुर का सारा किस्सा हमारे अपने किए की सजा है। एक पूरी हुकूमत की इज्जत और तौकीर सिर्फ चंद दीनार रिश्वत के बदले में। मैंने फातिहा पढ़ ली है इस हुकूमत की, तुम लोग भी पढ़ डालो।
1: नहीं अमीर,

फन है खू में नहाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। આજે સાથે મળીને એક નાનકડા વિષય ઉપર

हाँ ये बीबियां उसी तरह जिस तरह 11 मुहर्रम मैदान करबला में ये बीबियां बिखर गई थी, 40 के दिन भी क्या देखा गया, हर बीबी एक कब्र से लिपटी हुई है। हाँ देखा गया कि उम्मे लैला है जो अली अकबर की कब्र पर है। हाँ देखा गया दूसरी बीबियां है, लेकिन हाय वो मंजर देखा गया, बीबी ज़ैनब है इमाम हुसैन के कब्र से लिपटी हुई है। शायद अपने भैया से कह रही होगी कि भैया मैं लौट कर वापस आ गई, लेकिन हाँ ये 40 दिन बड़े सख्त गुजरे। हाय कूफा का बाजार था, इब्न ज़ियाद के ताले थे, उसके बाद शाम के बाजार में, और हाय शायद उस मंजर को जिक्र किया होगा जब दरबार शाम में इमाम हुसैन के सर को लाया गया और चूबे खेजरान के साथ इस जालिम ने जसारत की। सयालमुल्लदीन ज़लमु अय्यमुन कलबिन यनकलिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मातमे हुसैन।

ये जो सूरह रहमान में अल्लाह कहता है कि हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, ये कौकब दुर्री के अंदर हनफी बुजुर्ग ने इमाम सादिक से रिवायत की है कि इमाम सादिक फरमाते हैं

ये जो सूरह रहमान में अल्लाह कहता है कि हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, ये कौकब दुर्री के अंदर हनफी बुजुर्ग ने इमाम सादिक से रिवायत की है कि इमाम सादिक फरमाते हैं हल जजाउल एहसान हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की कुर्बानियों की जजा। और जजा क्या है? व्हाट इज द रिवॉर्ड? का अल्लाह ने कहा मरज अल बहरैन यल्तकियान, दो समंदर नूर के चलेंगे। ये दो समंदर कौन है? का अली और फातिमा, बैनहुमा बरज़ख ला यबगियान, दोनों के बीच में बरज़ख है। ना ये समंदर खत्म होगा ना ये ओशन खत्म होगा। बरज़ख का नाम मोहम्मद है। यख्रुजु मिन्हुमा लुलुवल मरजान, इन दो

तो जब हम दुनिया में होते हैं ना तो हमें अपना कलील बहुत कसीर लगता है, लेकिन जब हिसाब खड़े होते हैं तो कसीर भी कलील हो जाता है। हाँ, ये बड़ी अजीब मुश्किल है हिसाब की। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। अब इमाम ने अगले पैराग्राफ में फरमाया खुदा उस शख्स पर रहम करे, अब ये एक अच्छी सिफत आने वाली है कि इमाम फरमाने खुदा उस पर रहम करे, यानी ये आदमी काबिल रहम है खुदा ने मुताल की। कौन है वो काबिल रहम? रहम अल्लाह इमरान तफक्कर फअतबर वअतबर फअस्बर। खुदा उस शख्स पर रहम करे जो सोचो विचार से इबरत और इबरत से बसीरत हासिल करे, इबरत से बसीरत हासिल करे। तीन लेवल हो गए, एक तो वो बंदा है जो सोचता ही नहीं है, बेड़ चाल में मशगूल है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, बैठ घूम रहा है फिर रहा है, वो याकुलून वतमत्तउन वयुल्हिहिमुल अमल, खाता है पीता है, आरज़ुओं ने उसको दीवाना किया हुआ है। उसके मुकाबले में खुदा रहम करो उस बंदे के ऊपर जो सोचता है, सोचता है, समझता है, मामलात को देखने की कोशिश करता है। अच्छा, वो जो मामलात को देखने की कोशिश करता है, अगला स्टेज क्या आता है उसके बाद? वो फातबर, उसने इबरत हासिल की है, इबरत हासिल की है, यानी उसने सोचा समझा देखा, तो उसने देखा कि मसलन कुछ लोगों के हाथ में दौलत है, कुछ लोगों के हाथ में दौलत नहीं है, कुछ लोग बज़ाहिर इबादत गुजार हैं लेकिन इबादत गुजार उनके ऊपर इबादत का असर नहीं हो रहा, कुछ लोग आरिफ बिल्लाह है लेकिन ज़ाहरी हैसियत उनकी इंतहाई ख़राब है। ठीक है, तो उसने इन हालात के अंदर गौर किया, इन हालात में गौर करने के बाद उसने क्या किया? उसने इबरत हासिल की, इबरत हासिल की। इबरत क्या हासिल की? इबरत उसने यह हासिल की कि कुछ चीज़ें धोखा हैं और कुछ चीज़ें हकीकत हैं, ये इबरत उसने हासिल कर ली। जब इबरत हासिल की उसके बाद क्या किया? फअबसर, अब उसने बसीरत हासिल की है। बसीरत क्या हासिल की है? मुझे क्या हासिल करना है? वो कुरान करीम फरमाता है ये जो कुफर इख्तियार करने वाले हैं इनका शहरों में आना जाना तुम्हें धोखे में मुबतला ना करे, ये खुदा इनको मोहलत दे रहा है। अब बहुत सारे लोग इसी को देख फिर कर देखते हुए कि ये इधर जा रहा है ये उधर आ रहा है, वो अब मेरे और आपके सामने मसा अभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतरे, उसमें एक आदमी पता नहीं क्या ड्रेसअप होके आए, उसके हाथ में ये पकड़ा हुआ है, चार आदमी इधर आगे पीछे भाग रहे हैं, तो शायद यहाँ बैठना किसी के लिए मुश्किल पड़ जाए, वही मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बसीरत नहीं है। वो जो कारून जिस दिन अपने दौलत को लेके बाहर निकला तो बहुत सारे लोग कहने लगे या लैतना, अय काश हमारे पास भी ये सब होता। तो जो साहिबान इल्म थे उन्होंने कहा तुम लोगों को क्या हो गया है, जो अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है। सही है, अब ये बसीरत तो सबके पास नहीं है ना। इमाम फरमाने खुदा उस पर रहम करे जो देखे सोचे समझे इबरत हासिल करे और उस इबरत को बसीरत के जरिए अपने वजूद के अंदर कायम कर ले। क्या बसीरत ले? दुनिया की सारी मौजूद चीज़ें मादूम हो जाएंगी गोया कि वो थी ही नहीं, और आखरत में पेश आने वाली चीज़ें जल्दी मौजूद हो जाएंगी गोया कि वो अभी मौजूद हैं। सही है, अरबी देखिएगा, फकअन्ना मा हुआ काइनुन मिन अद्दुनिया अन क़लीलिन लम यकुन वकअन्ना मा हुआ काइनुन मिन अल-आखरत अम्मा क़लीलिन लम यज़ुल। जो आखरत की चीज़ें थी जो अभी लग रहा है ही नहीं, इमाम फरमा रहे गोया हैं, और जो दुनिया की चीज़ें लग रहा है ये हमेशा रहेंगी, इमाम फरमाने गोया ये थी ही नहीं। और ये जो गोया है वो मेरा अपने ख्याल है कि ये वो पर्दा है जो हमारे लिए है कि हम दुनिया को देख रहे हैं और समझ रहे हैं अरे भाई ये मिसाल के तौर पर फलां पोस्ट पे पहुंचा हुआ प्रेसिडेंट, ये अब इसकी ताकत कितनी है। इमाम फरमाने ये थोड़ा संभल जाओ, सब ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, और फिर तुम्हारे सामने वो आएगा जो अभी तुम्हारे सामने ऐसे है जैसे है ही नहीं, जबकि वही है, जबकि वही है। ये बसीरत, हर शुमार में आने वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और जिसकी आमद का इंतज़ार हो उसे आया ही जानो और हर आने वाले को नज़दीक ही समझो। कुल्ल मअदूदिन मुनक़दिन, यानी जिसको तुम काउंट करते हो सब ख़त्म, और जिसको तुम समझ रहे हो शायद आएगी समझ लो आ गई है। बहरहाल इससे ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पहला जुमला था, पहला पैराग्राफ था वो दुनिया के बारे में था, दुनिया को कैसे देखो। दूसरे पैराग्राफ में इमाम फरमाया उस पर

देता है, वार्निंग भी नहीं दे रहा, नफ्स इसका मलामत भी नहीं कर रहा है। जो भटकता है भटकता रहे, जो जुल्म कर रहा है करता रहे, जो जिस तरीके से इसको फजूर कर रहा है करने देता है खुदा। क्यों? इसको खुदा ने इसके हाल पे छोड़ दिया। अगर इसको खुदा ने अपने हाल पे ना छोड़ा होता तो इसे कोई वार्निंग भेजता, कोई बीमारी भेजता, कोई सख्ती डालता, ये वो बंदा ही नहीं है। तो फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक, लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो है जिसे अल्लाह ने उसके नफ्स के हवाले कर दिया है। हाँ, नफ्स के हवाले कर दिया, और नफ्स क्या करता है? नफ्स माबूद बन जाता है। यानी खुदा का एक मकाम है कि उसकी परस्तिश की जाए, उसकी बंदगी की जाए। एक शख्स है जो अपने नफ्स की बंदगी करता है, जो नफ्स कहता है वो करता है, तो खुदा ने उसको अपनी बंदगी से निकाल कर नफ्स की बंदगी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अब ये इसका बंदा है। इस तरह के वो सीधे रास्ते से हटा हुआ बगैर रहनुमा के चलने वाला है। अगर इससे अच्छा, अब निशानी क्या है? इंसान शनासी यहाँ पे आएगी ना। निशानी क्या है? कौन सा बंदा किसका है? हमारे पास वो जो बहुत अजीम शान रिवायत है, जब मैं किसी रिवायत की तारीफ़ में जुमला कहता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि लोग मफहूमन ये ना सोचें कि दूसरी अजीम शान नहीं है। तो हर रिवायत अच्छी है, लेकिन गैर मामूली बात औकात कोई जुमला इंसान के दिमाग को लगता है। तो फरमाया कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया की औलाद हैं और कुछ लोग इस दुनिया के अंदर आखरत की औलाद हैं। तो तुम दुनिया की बच्चे ना बनना, तुम आखरत की औलाद बनना। कूनु अबना अल आखिरा, आखरत की औलाद बनना। यानी कुछ वो हैं जिनको दुनिया देख के कहती है ये मेरे बच्चे हैं, इनको मुझसे ताल्लुक है, मुझे इनसे ताल्लुक है। और कुछ वो हैं जिनको आखरत देखकर कहती है ये हमारे हैं, हमें इनसे ताल्लुक है, इनको हमसे ताल्लुक है। तो फरमाया तुम लोग दुनिया के बच्चे ना बनना, दुनिया की औलाद ना बनना, तुम लोग आखरत की औलाद बनना। इमाम फरमाया ये शख्स कौन है? इसको अल्लाह ने इसके नफ्स के हवाले कर दिया। यानी नफ्स जो कहता है वो करता है, नफ्स कहता है जुल्म करो जुल्म करता है, नफ्स कहता है लालच दिखाओ लालच दिखाता है। इस तरह के वो सीधे रास्ते से हटा हुआ बगैर रहनुमा के चलता हुआ, अगर इसे दुनिया की खेती के लिए बुलाया जाता है तो सरगर्मी दिखाता है, और आखिरत की खेती के लिए कहा जाता है तो काहली करता है। नुमाइश के लिए बुलाओ, नमूद और नुमाइश के लिए। यहाँ पे तुम्हारी शोहरत, वहाँ पे तुम्हारी दौलत, यहाँ पे तुम्हारी ताकत। फुर्तीला तरीन इंसान है, ज़रा इसको बुलाओ अल्लाह की बंदगी के लिए। गायब, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। आप मुझे बनाया भाई फलां जगह पे जाकर आपने खिताब करना है, 15,000 का मजमा लगा हुआ है, 25,000 का मजमा लगा हुआ है, मैं भागा भागा पहुंच रहा हूं, और मुझे से कोई कहे तुम आधे घंटे बैठ के अल्लाह के लिए बंदगी करो, खामोशी से करो। वही जो स्टेज के ऊपर, हमारे पंजाब के दोस्त साहब स्टेज कहते हैं, वही जो वहाँ पर जाके खूब गरज रहा है, चमक रहा है, उससे को आगे आधे घंटे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते क्यों नहीं हो? वो खुदा के लिए था तो ये किसके लिए? और अगर यहाँ पे नहीं है तो वहाँ किसके लिए? फिर ये फ़र्क है। इमाम फरमा रहे हैं कि इन दो आया हर से दुनिया अमिल। अच्छा, इससे भी बदतर, चलो इससे बदतर पे मैं क्यों जाऊँ, इससे बदतर पे हम क्या ज़रूरत बताने की? इन दो आया हर से दुनिया अमिल, अगर वो उसको दुनिया की हर्स के लिए, दुनिया की खेती के लिए बुलाया जाता है, दुनिया के काम काज के लिए, आमिल भरपूर फुर्तीला, वेन दो या हर्सिल आखिरा कसिल सुस्त काहिल, कअन्नमा अमिल लहू वाजिबुन अलैह व कअन्नमा वफा फीह साखितुन अनहु। इमाम ने रिजल्ट ये निकाला, गोया जिस चीज़ के लिए इसने सरगर्मी दिखाई वो तो ज़रूरी थी, यानी दुनिया तो ज़रूरी थी, और जिस चीज़ में सुस्ती और कोताही की वो उससे साखित है, यानी इसका अमल ये बता रहा है कि इसको आखरत इसके ऊपर साखित हो गई है, इसको सिर्फ दुनिया चाहिए। और कुरान करीम फरमाता है कि लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदा से भी सिर्फ एक ही तलब है, वो क्या? रब्बना आतिना फिद दुनिया, ख़त्म। ए खुदा दुनिया दे, और खुदा कहता है तू दुनिया ले, ख़त्म। तो इमाम फरमा रहे हैं ये बदतरीन मखलूक अल्लाह के नज़दीक है, ये सिर्फ दुनिया मांगता है। अब वो चंद दिन पहले हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था भाई, ज़ियारत आशूरा से भी दुनिया मांगता है, आलम से भी दुनिया मांगता है, इससे भी। फिर तो एक दिमाग में आने लगा कि भाई हमसे कोई ये कह सकता है कि मौलाना अगर यहाँ से दुनिया नहीं मांगे तो दुनिया कहाँ से मांगें?

पहली बात तो है कि दुनिया बहुत ज़्यादा मांगो ही क्यों, बहुत ज़्यादा दुनिया क्या करना, इताअत मांगो, बंदगी मांगो, दुनिया भी मांगो तो इताअत के लिए मांगो, सही है। लेकिन मुमकिन है मुझसे कोई ये कहे कि मौलाना बाद वक़्त दुनिया में मुश्किलात आती हैं, उसको किससे हल करवाएं, फिर करवा मुश्किल हल करवा सकते हैं, उसमें क्या बुराई है कि मसलन मौला से कहें मौला दुनिया की सख्ती आई है इसमें इस्तकामत नसीब कर दें, सब्र नसीब कर दें, ये कर सकते हैं, मुश्किल को आसान करने। वैसे मैं एक और बात कह रहा हूँ माजरत के साथ, पता नहीं ये शायद किसी को बुरी ना लगे, दुनिया की मुश्किल हल करनी हो ना, ऐसी मैं एक जुमला कह रहा हूँ, माँ की कब्र भी बहुत है, माँ बाप की कब्र भी बहुत है, इतना दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। रिवायतों में है हमारे पास कि अपने माँ बाप के वसीले से वास्ते से भी मांगो ना, दुनिया हल हो जाएगी तुम्हारी, नहीं बचेगा कुछ। मैंने कहीं पे ये जुमला बोल दिया, वो एक बंदा था उसने सुन लिया, तो बाद में मुझे मिला कहने का मौलाना मैं इसमें एक तरमीम करना चाह रहा हूँ। बात अवकात मुझे भी बुरा लगता है कोई मुझसे कहता है मेरी बात में आपको मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने उससे कहा कि अच्छा है आप बताएं क्या करेक्शन। कहने का आपने कहा था ना वालिद और वालिदा, मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। कहने का मैंने ससुर पर भी ट्राई किया, उसकी कब्र पर भी काम हो जाता है। मैं अपने ससुर की कब्र पे गया था मांगने के लिए, उस पर भी हो गया था। तो उसे अजीब व गरीब एक वाक़ा सुनाया, कहने का इतना बुरी तरीके से मैं लॉक में फंस गया था कि मिसाल के तौर पर कल ये काम होना था और आज दोपहर शाम तक कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा था, और जो वसीला नज़र आ रहा था बता रहा था 3 दिन बाद होगा 4 दिन बाद होगा मुझे कल जाना था। कहने का मैं शाम को गया वादी हुसैन, वहाँ पर ससुर की कब्र थी, तो मैंने कहा मौलाना ने कहा था अम्मा अब्बा की कब्र में, अम्मा अब्बा की कब्रें यहाँ है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, तो ये ससुर की खबर है, इस पे खड़े होकर मांगूँ शायद कुछ हो जाए। कहने का मौलाना बस मैं कब्रिस्तान से निकला हूँ और मुझे फ़ोन आया आपका मसला हल हो गया, अब पता नहीं इत्तेफाक से हुआ और नहीं मालूम, लेकिन क्या पता खुदा है, खुदा देने में कम नहीं करता है, खुदा बहाने से दे देता है। तो भाई ये दुनिया के जो मसाइल हैं ना, इसमें माँ बाप की भी बहुत चलती है, माँ बाप बहुत हैं इसके लिए, तो आप और मैं कम ना समझें, माँ बाप का मसला बहुत ख़तरनाक है, जितना चलती है उसी हिसाब से बिगड़ भी सकती है, ये मामला बहुत ख़तरनाक है। क्यों ऐसा है? खुदा की जो हाकिम सिफत है वो रहम है, खुदा की हाकिम सिफत रहम है, और ये वालिदैन रहम इलाही, खुदा के रहम का मज़हर हैं। अगर इनके साथ किसी ने बिगाड़ दी, इसका मतलब है खुदा का रहम इसको नहीं पहुँचेगा, अब रहम नहीं पहुंचेगा तो अदल आएगा, अदल में कौन बचता है फिर, अदल में तो कोई चांस ही नहीं है हमारा, हम तो खुदा के रहम के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। रब्बना आमिलना बिफ़ज़लिका या करीम वला तुआमिलना बिअदलिका या रहीम। तो वालदैन से बिगाड़ने का मतलब ये है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला रहम खुदा से निकल गए, फिर तो बचता ही नहीं फिर कुछ। इस खातिर वालदैन का मामला बहुत ख़तरनाक है। चलो कब्र पे नहीं जा सकते, घर में बैठ के फातिहा पढ़ सकते हैं, घर में बैठ के कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, मसला नहीं है, इंशाअल्लाह सब कुछ पॉसिबल है। इंशाअल्लाह खुदा आपके वालदैन दुनिया में हों, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अगर दुनिया से जा चुके हैं खुदा दोबारा उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह। अपने वालदैन की सेहत सलामती के लिए अगर हयात हैं और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत दर्जात की बुलंदी के लिए दुरूद भेजें, मोहम्मद वाले मोहम्मद صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم। इमाम ने ये जुमलात इरशाद फरमाए, उसके बाद दो पैराग्राफ हो गए इस इंसान शनासी के ऊपर, खुदा उस पर रहम करे बता दिया, आलिम कौन है बता दिया, बदतरीन मखलूक अल्लाह के नज़दीक इंसान कौन है बता दिया। अब इमाम ने ज़माने के बारे में कहा है, ज़माना इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर बुनियादी असर डालता है, अब अच्छे ज़माने में हो उसूल कुछ और हैं, अब बुरे ज़माने में हो उसूल कुछ और होने लगते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। बड़ी अजीब, आज मैं एक रिवायत देख रहा था, मुझे नहीं याद किस ग्रुप से आई थी, शायद किसी ईमेल से आई थी, कहाँ पे, उसमें बहुत अजीब एक जुमला लिखा था, जुमला लिखा था कि अगर कोई शख्स इंतहाई पस्त हो तो उसको माफ़ करना उसको इतना ही बिगाड़ता है जितना करीम इंसान को माफ़ करना उसको इज्जत देता है।

का मौजजा जमीन के ऊपर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुकद्दसा है। और इन बहनों, मैंने आपके सामने जुमला कहा, बहन 18 भाइयों के लाशों के दरमियान से गुजरी है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ो, मैं बहुत सख्ती भी अपने ऊपर करता हूँ ना कि मैं कभी बाजारों के मसाहिब पढ़ूँ, दरबारों के मसाहिब पढ़ूँ, मैं ना शर्म से पढ़ पाता हूँ या मेरा अंदाज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि एक बहन हो जिसके भाइयों के सर नेज़ों पे लगे हो, जहां जाए अपने भाइयों के सरों को ले। ये इस मजरूबा बहन ने कैसे बर्दाश्त किया है? ये कौन सी बसीरत है? ये कौन से इम्तिहान है? और फिर एक मौका है जब शाम के दरबार में ये मुकद्दस बहन रस्सियों में बंधी हुई हो और सामने तस्त में उसे कर रखा हुआ। अल्लाह अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। परवरदिगार, तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का, हमें नबी की औलाद नबी की बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत नसीब फरमा। ए खुदा, मादर हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार, दुनिया और आखरत में अहले बैत की हमराही नसीब फरमा। जिन दुश्मनों ने ये जुल्म अंजाम दिया उन्हें बदतरीन आज़ाब में मुबतला फरमा। ए पाक परवरदिगार, इन मसाइब के सदक़े में उनके वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। इन आंसुओं के सदक़े में उनकी नुसरत और इस राह में शहादत नसीब फरमा। मा समय हुसैन।